0: जिस विसरह सो मर जाए।
1: महाराज सेज की तुद चित आए महा आनंदा। ओ वाहिगुरु जी, व्हेन आई रिमेंबर यू आई गेट द हाईएस्ट ब्लिस, द हाईएस्ट ब्लिस एवर आई गेट इट फ्रॉम जस्ट रिमेंबरिंग यू। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। व्हेन आई फॉरगेट यू, द पर्सन हु फॉरगेट्स यू मे एज वेल डाई। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट पर्सन कमिंग अपॉन दिस अर्थ हु फॉरगेट्स द नाम। जिन ऐसा हर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राजे। ओ वाहिगुरु, दोज हु डोंट से योर नेम, व्हाई डिड दे कम हियर? What was the point of being a human being and not using it for the point of Anand, Maha Anand?